0: tout le mois d'août sur Fréquence Protestante, retrouvez le meilleur de l'année sur le 100.7.
1: Fréquence Protestante, une 10, Richard Casade-Saint-François.
2: सारे गामा कारवा डिजिटल ऑडियो प्लेयर, इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें।